0: विविध भारतीचं हे नागपूर केंद्र आहे. ठीक 6 वाजता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या आम्ही आमच्या केंद्रावरून सहक्षेपित करू. कृपया प्रतीक्षा करा.
1: सुबह के 6 बजने वाले हैं. थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास. इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे. वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी. श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है.
3: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है. उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के

0: बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। झरोखा भी अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216। 6:45 पर इन दिनों आप सुन रहे हैं संगीत सरिता में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति है मनीषा जैन की। सुनिए इस श्रृंखला का 11वां भाग। भूले इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2:00। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक रूप कुमार राठौर पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 सुनिए पिटारा में आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 से तय करेंगे सुरीला सफर। पर सदाबहार नगमे। 3 सुनिए सखी सहेली। 4 हेलो फरमाइश। 5 छाया गीत। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए।

निर्देशक इकबाल अली से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति है जुबैर खान की। 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका कटते कगारे, लेखन है चंद्र भारद्वाज का, निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। दस बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। माफ कीजिएगा, 9 बजे आप सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, फिर 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है

कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। ये है इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, बहुत से संगीतकारों की रचनाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने रिदम पैटर्न के बारे में, ताल जो बज रहा है उसमें अपना कुछ दे करके, जोड़ करके एक नया पैटर्न बनाया है, नया रिदम पैटर्न देखने को मिलता है। वो उस गीत की जरूरत हो। जैसे आर डी बर्मन साहब का एक एल्बम है दिल पड़ोसी है, उसमें जो गीत है उसकी झलक पहले सुनते हैं।

0: दिल पड़ोसी है एल्बम से ये जो गाना था गुलजार साहब की रचना है, आशा जी के स्वर में हमने सुनी, और इस रचना में जो ताल बज रहा था वो स्वयं उस गीत के लिए आरडी साहब ने
1: कंपोज किया
0: था या उसे बनाया था, ये कह सकते हैं।

0: ऐसे ही प्रयोग धर्मिता फिल्म संगीत के बारे में भी देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल देखने को मिलती है। और देखिए कि फिल्मी गीतों का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उसी वजह से आया है और वो उस गाने को चिरंजीवी बनाता है।
0: जी जी जी।
1: तो इसमें जब हम लोग ये रिदम पैटर्न की बात करते हैं
0: जी,
1: तब मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी लगता है, जैसे संगीतकार होते हैं, अरेंजर होते हैं, तो उसी तरह से फिल्मों में रिदम कंपोजर भी रहे हैं। अण्णा जोशी, मारुति कीर, भवानी शंकर, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका योगदान है कि जिस वजह से हमको ये इतने अच्छे अच्छे पैटर्न सुनने को मिले हैं। तो ये जो होता है, गाना जब बनता है तब गाने के साथ में उसका रिदम कैसा होना चाहिए, उसका रिदम पैटर्न क्या होना चाहिए
0: जी,
1: ये तय करने वाले ये रिदम के अरेंजर होते हैं। और वो किस वाद्य पे ये पैटर्न अच्छा लगेगा, कौन से वाद्य का उसमें प्रयोग करना उचित होगा, ये वो तय करते हैं।
0: अच्छा।
1: और उस वाद्य के ऊपर फिर वो जब पैटर्न बजता है तब जाकर वो रिदम अच्छा तैयार होता है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है। तो रिदम का महत्व इसलिए है कि वो शुरू में ही उसके ऊपर काम किया जाता है, शुरू में ही उसके ऊपर सोचा जाता है कि ये गाने के लिए हम रिदम का पैटर्न किस तरह रखेंगे, इसमें वेरिएशन लाने के लिए कहाँ पर उसको मोड़ देंगे, कहाँ पर उसका वो मोड़ को फिर से और एक मोड़ देकर दूसरी राह पर या जो मूल प्रवाह है उसमें
0: जी,
1: लाएंगे
0: जी।
1: तो मूल प्रवाह से मोड़ लेकर जाना, फिर मूल प्रवाह में आना, ये सारी चीज़ें जो है वो रिदम पैटर्न के लिए वो अरेंजर तय करते हैं। तो ऐसे में देखो, जैसे तबले के साथ में ढोलक बजा, फिर वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ में तबला बजा, तो उसी तरह मल्टीपल आर्टिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कलाकार लेकर हम लोग मतलब एक अच्छा रिदम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऐसा जब हमारे प्रतिभाशाली संगीतकारों को लगा तो उन्होंने क्या किया कि दो तबले की बजाय और चार पांच तबले, छह तबले, सात तबले ऐसे एक साथ बिठाए,
0: रिदम सेक्शन को बढ़ाया,
1: रिदम सेक्शन को बढ़ाया, जबकि मल्टीपल ट्रैक्स है लेकिन हर एक कलाकार जो है उसका बजाने का एक अपना लहजा होता है, उसका उस वाद्य के ऊपर का नियंत्रण अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोग जब एक साथ बजाते हैं तब वो चार ट्रैक एक ही आदमी से बनाने से कुछ अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोगों को बिठाकर एक साथ में एक पैटर्न उनको दिया जाता है और वो पैटर्न वो लोग बजाते हैं
0: जी,
1: और उसमें फिर गाना जब हम लोग सुनते हैं तो जैसे भोर भई पनघट पर मुहे नटखट श्याम सताए,
0: बहुत सुंदर रचना है,
1: उसका पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है और तबला भी एक साथ बजा हुआ है।
0: तो क्यों ना इस गीत की झलक सुन ली जाए।
1: बिल्कुल।

0: सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रविंद्र जी, इस विश्व की, इस दुनिया की एक लयबद्धता है
1: जी,
0: ऐसे ही हमारे जीवन के, सभी के जीवन की अलग अलग लय है। एक विशिष्ट लय में हम सब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कला के साथ, संगीत के साथ कैसे इसे जोड़ करके और समृद्ध किया जा सकता है?
1: जी, हमने इस पूरी श्रृंखला में ताल के बारे में बात की है
0: जी,
1: तो अब जब इसका समापन करने जा रहे हैं तो जीवन का और ताल का कैसे संबंध है उसके बारे में बात करके मैं मेरी बात पूरी करना चाहूँगा
0: जी।
1: पूरी सृष्टि जो है उसमें एक ताल है। ये ताल जो होता है वो ताल, जैसे सूरज का रोज सुबह आना, शाम को सूरज का ढलना
0: जी,
1: फिर दूसरे दिन सुबह आना, तो ये एक प्रकार का चक्र है, ताल चक्र जिसे हम कहते हैं
0: जी।
1: सम है, काल है, फिर सम आई, फिर काल आया। तो उस तरह जीवन में हर जगह, मतलब सृष्टि में तो हर जगह आपको ताल खिलता हुआ दिखेगा। जैसे पृथ्वी जो है वो सूरज के
0: इर्द गिर्द
1: चक्कर लगाती है, तो उसमें भी एक ताल है
0: जी।
1: पूरे सृष्टि में जगह, अगर झरने से पानी बह रहा है तो उसकी एक मधुर नाद आती है, सुनाई देती है, उसमें भी एक ताल होता है
0: जी।
1: तो ऐसे हर जगह पर हमारा जो जीवन है वो पूरा तालमय है। घड़ी की टिक टिक जिस समय के साथ में हम लोग चलते हैं
0: जी जी,
1: वो भी एक ताल दर्शाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हृदय जो है
0: जी,
1: वो भी एक ताल में चल रहा है, और जब तक ये ताल हमारा सही चलता है तब तक हमारा जीवन भी सही चल रहा है। इसलिए हम लोग जो है ना शब्द प्रयोग करते हैं कि तालमेल बनाए रखो
0: जी। हाँ जी,
1: तो तालमेल जो है ये मेल होना जरूरी है ताल का जीवन में, और वो मेल अगर अच्छे से होता है तो पूरा जीवन हमारा अच्छा होता है।
0: क्या बात है।
1: मैं अपने इस कार्यक्रम का समापन स्वर सम्राज्ञी लता दीदी, जिनके गले में हम लोग कहते हैं कि माँ शारदा बसी है
0: जी,
1: और जिनका गाना जो है वो अपने आप में एक ताल है। मतलब जैसे हमने कहा शुरू में कि सुर और ताल ये संगीत की बुनियाद है
0: जी,
1: और उसका मिलाप जिसमें बहुत अच्छे से होता है वो हमें सबसे ज़्यादा कर्णप्रिय लगता है, सबसे ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो लता दीदी का गाना हमें इसलिए अच्छा लगता है कि सुर और ताल इसका जो मेल उनमें है वो देखते देखते खुशी से जीवन भर जाता है
0: जी जी। तो श्रोताओं को भेंट करने के लिए लता जी के स्वर में वो कौन सा गीत है?
1: पलकों की छाव में, इस फिल्म का, कोई मेरे माथे की बिंदिया।
0: वाह वाह, बहुत सुंदर गीत है और एक निराला ही ढंग है इसमें ताल का, और वो प्रयोग धर्मिता की जो हम बात कर रहे थे
1: हाँ,
0: वो यहाँ हमें दिखाई देती है। आइए सुनते हैं यही।

0: पलकों की छांव में इस फिल्म से लता जी के स्वर में ये सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर, ये श्रृंखला अब समाप्त होती है। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार, आकाशवाणी के ही आत्मीय श्री रविंद्र खासनीस जी। रविंद्र जी, विविध भारती के सुनने वालों की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से हम आपके हृदय से आभारी हैं।
1: जी धन्यवाद।
2: सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आवारा फिल्म के इस गाने के साथ, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाजी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना अफसर फिल्म से। सुरैया की आवाज में नरेंद्र शर्मा की बोल, संगीत है सचिन देव बर्मन का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप नौजवान फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कही है ना?
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: इस संदेश के पहले आप सुन रही थी सजा फिल्म का गाना। संध्या मुखर्जी, हेमंत कुमार की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कलम 12 नुसार पात्र नागरिक निशुल्क कायदेशीर मदत न्याय बंधू या मोबाईल ऍप वरून किंवा www.provono-doj.in या वेबसाईट वरून मिळवू शकता.
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमें राही प्यार के. कार्यक्रम का पहला गाना है खेल खेल में, इस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गुलशन बावरा के बोल, संगीत है राहुल देव बर्मन का.

सीता और गीता, इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे लाखों में एक, इस फिल्म से ये गाना। आनंद बख्शी के बोल, संगीत राहुल देव बर्मन का। कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

0: सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
1: तो ऐसा बोलो ना,
0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
2: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म से। मुकेश और कंचन की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अपने रंग हजार इस फिल्म से, किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अनजान के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इसी के साथ आज का हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: FM 106.6 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का यह नागपुर केंद्र है। ठीक 8 बजे हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है। विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिश

0: विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
3: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
5: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पतालों मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियन।

0: इंजन्स में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
2: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
6: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
2: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
7: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है।

0: कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना।

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

0: कैसी है ये दीदी भला आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली।
1: किसने?
2: मैंने?
1: नहीं तो?

हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: रेडिओला तर 90 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि गेल्या 90 वर्षाची ही एक वैभवशाली दैदिप्यमान परंपरा आकाशवाणीची राहिलेली आहे. भारतीय स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळापासून तर आजतागायत आकाशवाणीने आपल्या देशातील विविध परंपरा, आपल्या देशाचा इतिहास, आपल्या देशात घडणाऱ्या अनेक मोठ्या घटना घडामोडी यांचा ऑल इंडिया रेडिओ हा एक मोठा साक्षीदार राहिलेला आहे. आणि गेल्या 90 वर्षापासून बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हे जे पब्लिक सर्व्हिस ब्रॉडकास्टिंग लोकसेवा प्रसारणाचं आपलं कार्य ध्येय अविरतपणे ऑल इंडिया रेडिओच्या माध्यमातून श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहे. आणि ऑल इंडिया रेडिओच्या या दैदिप्यमान इतिहासाला आणि या वैभवशाली परंपरेला माझं नमन आणि पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप खूप शुभेच्छा.
1: श्रोते हो, हॅलो डॉक्टर, या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमाविषयी निवेदन ऐका. गुरुवार म्हणजे आज दिनांक 11 जून 2026 सकाळी 10 वाजता आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारती नागपूरवरून एकाच वेळी प्रसारित होणाऱ्या हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमाचा विषय आहे ऑस्टिओपोरोसिस. आपल्या प्रश्नांना उत्तरं देतील डॉक्टर आर बी कळमकर. श्रोत्यांनी थेट प्रश्न विचारण्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 6940067 2560101 आणि 2529266. तेव्हा ऐकायला विसरू नका लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर आज सकाळी 10 वाजता. विषय आहे ऑस्टिओपोरोसिस. निवेदन संपलं. FM Band 106.6 MHz पर विविध भारती का यह नागपूर केंद्र है. सुबह के 8:30 हुए है. प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद.
2: हेलो नमस्कार दोस्तों. कहानी मेहनत के फल की. एक बार बादलों की हड़ताल होगी. बादलों ने कहा अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे. ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए. लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था. कुछ बादल थोड़ा सा नीचे से गुजरे और किसान से बोले क्यों भाई पानी तो हम बरसाएंगे नहीं फिर क्यों हल चला रहे हो. किसान बोला कोई बात नहीं जब बरसेगा तब बरसेगा लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 सालों में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ. अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाए तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई. जिन्होंने सब पैक करके रख दिए वो हाथ मलते रह गए. सो लगे रहो भले ही परिस्थितियाँ अभी हमारे विपरीत है लेकिन आने वाला समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा. दोस्तों कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते. हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग. तो दोस्तों करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत और लेते हैं ये पहला फोन कॉल. हेलो
3: हेलो
2: जी नमस्कार. हेलो मेरी पसंद इस प्रोग्राम में करते हैं हम आपका बहुत बहुत स्वागत.
3: हेलो गुड आफ्टरनून. नमस्ते मैम, मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ.
2: नमस्ते जी नमस्ते.
3: आपके विविध भारती के आकाशवाणी का तो रेगुलर लिसनर हूँ
2: जी.
3: आपके जो मतलब फोन इन प्रोग्राम है मैं 5-6 महीने के बाद पर कॉल कर रहा हूँ. मुझे एक सॉन्ग रिक्वेस्ट करनी थी. इन्वायरमेंट से रिलेटेड मतलब एक सॉन्ग है पिक्चर का.
2: जी जी.
3: उसकी आवाज में एक सॉन्ग है पंछी सुर में गाते हैं भवरे गुनगुनाते गुंगुरू बचाती है हवा. ये गाना एक है.
2: बहुत प्यारा गीत चुना है आपने भी.
3: 99 में ये मूवी आई थी तो हमको याद है. मतलब उन दिनों हम लोग अपने टीनेज में थे तो बहुत इंजॉय करते थे इस तरह के मतलब सॉन्ग. शो तो मुझे अच्छे लगते हैं.
2: जी जी जी. और पिक्चर भी क्या पिक्चर बनी थी.
3: ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों को मतलब ना जैसे वाटर मतलब पानी हो गया इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल डीजल सब कुछ जितना हो सके हर चीज को मतलब ना सेव करना हर चीज को.
2: जी जी बिल्कुल सही बात कही.
3: जितना हो सके अपने मतलब फिजिकल एक्सरसाइज मतलब वॉक करना मतलब वॉकिंग के ऊपर जोर देना चाहिए. साइकिलिंग जैसे कोई आस पास कोई किराना शॉप भी जाना तो हो सके तो पैदल जाने की कोशिश कीजिए मैम जरूर. क्योंकि ना ये सब चीजें बहुत मतलब रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और अपनी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है.
2: जी जी बिल्कुल सही कहा है अमर जी आपने, और बहुत ही अच्छा संदेश आपने आज हमारे इन श्रोताओं को दिया है, तो हम तहे दिल

से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं अमर जी, और गाना भी आपने बहुत प्यारा बताया है, तो हम जरूर ही आपकी इस फरमाइश को हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो मेरी पसंद इस प्रोग्राम में करते हैं हम आपका स्वागत।
1: जी, नमस्कार
0: आपका शुभ नाम बताइए।
1: जी। मैं किरण वानखेड़े कोहली।
0: जी किरण जी, क्या करते हैं
1: हेलो।
0: आप पसंद?
1: खेती का काम करते हैं
0: जी, और अभी क्या है
1: हाँ
0: खेती
1: जी।
0: में फिलहाल?
1: अभी तो कुछ नहीं है, अभी सब तैयारियां चालू है।
0: तो किस तरह की आप
1: बारिश का
0: तैयारियां करते
1: इंतजार
0: हैं?
1: है।
0: जी, बारिश का इंतजार है, जरूर हम सभी को बारिश का इंतजार है, क्योंकि अभी
1: हाँ,
0: धरती
1: सब
0: इतनी
1: खेती
0: तप चुकी है कि हम सब लोग चाहते हैं कि अब कहीं ना कहीं बारिश की बूंदें जरूर बरसें।
1: बरसेगी ना।
0: जी, बिल्कुल बरसेगी और मौसम भी सुहाना होगा बहुत जल्द। तो किरण जी, बताइए आज इस प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: जी, मुझे हीरो नंबर वन का सुनना था, मैं तुझको बगल आया।
0: जी, आपने किसी को सही में भगाया है? नहीं भगाया है।
1: हाँ, भगाया है।
0: अच्छा जी,
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा, कि बहुत बढ़िया। और जिंदगी कैसी चल रही भी?
1: जी बढ़िया है,
0: चलो
1: दुआ है आपकी।
0: जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, और जो भी चीजें आपने उस समय की होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक टर्न एंड ट्विस्ट सबके जिंदगी में आता है, और बखूबी आपने वो जो रिश्ता है निभाया है। और चलिए, मेरे ख्याल से आपने उन्हीं के लिए ये सॉन्ग डेडिकेट किया है। चलिए, ऐसे ही आप विविध भारती सुनते रहिए किरण जी, और हम भी आपकी फरमाइश हमारे इस प्रोग्राम में जरूर पूरी करेंगे। आइए सुनते हैं आपके फरमाइश किया हुआ हीरो नंबर वन इस फिल्म का गीत।

0: हेलो
1: हेलो जी, स्वागत करते हैं हम आपका हेलो मेरी पसंद इस प्रोग्राम में।
0: एक गाना सुनना था
1: जी, आपका नाम बताइए।
0: साहिल बेले।
1: साहिल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: हम बिड़गांव से बात कर रहे हैं, नागपुर।
1: और कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है।
1: क्या करते हैं भाई आप?
0: अभी तो पढ़ाई करते हैं।
1: जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं
0: अभी? ये कंप्यूटर में जो करते हैं, 3 साल का कोर्स आता है, डिप्लोमा अंजुमन हाई स्कूल में कर रहे हैं।
1: अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और आगे क्या करना चाहते हैं साहिल जी आप?
0: आगे देखो, अच्छा परसेंटेज मिलेगा तो और भी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कीजिए, बहुत पढ़ाई कीजिए, तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए, आजकल कंप्यूटर हर जगह आ चुका है, तो बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि सारा शायद कंप्यूटराइज हो जाए। हम जो अभी लिख रहे हैं कॉपी पे, बुक पे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कम होते जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: ये बात तो आपकी सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के जमाने में पढ़ाई में दो चीज जरूरी है कि हर एक माता पिता तो पैसे लगाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख है अपने बच्चे, माँ बाप पैसे लगाते हैं, लेकिन हमारा भी ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को फायदा मिले। ये जिंदगी का पर्याय है।
1: जी जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना हर एक बच्चे का, हर एक युवा का फर्ज होता है, तो आप भी ये फर्ज बखूबी निभाएंगे, हम आशा करते हैं। और साहिल जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: ये तेरे जो पायल की झुन झुन है, उसके संगीत का शायद आनंद समाधान।
1: जी चलिए, जरूर आपकी फरमाइश पूरी करते हैं साहिल जी, और सुनिएगा आपकी फरमाइश किया हुआ।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: जी, हेलो। मेरी पसंद इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी मैडम, धन्यवाद।
0: जी, और आपका नाम जानना चाहेंगे हम।
1: हाँ, मैं अनिल बोल रहा हूँ मैडम।
0: अनिल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जैताला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: मौसम क्या कहता है जैताला का?
1: मैडम, अभी मौसम तो ऐसा हो गया कि पूरा गर्मी के कारण तो लोग निकल नहीं रहे बाहर, और शादी का भी माहौल चल रहा है अभी।
0: देखिए, साथ साथ शादियों का भी माहौल चल रहा है और लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें आगे का अगर सोचते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्या कहते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। हमारे घर के सामने में पेड़ है, तो मैंने ऐसी मिट्टी का ये बनाया गोला, उसमें पानी डालते रहता हूँ
0: अच्छा जी, तो ये
1: और
0: पंछियों
1: दो
0: के
1: तीन
0: लिए
1: छोटे छोटे
0: ये आप
1: मड़के बन के
0: पानी?
1: रख देता हूँ
0: अच्छा, जी।
1: पक्षियों के लिए, पानी पीने के लिए। हाँ
0: जी, बहुत बढ़िया काम किया है आपने। और क्या करते हैं आप?
1: मेरा मैडम इसका काम है अपना सोशल वाला, इधर उधर का।
0: जी, और कोई ऐसा हादसा जिसे कह सकते हैं हम, कुछ ऐसा आपको याद है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं?
1: हाँ मैडम, अभी हादसे होते रहते। एक बार मैं जैताले से जाते जाते एक जन लड़की को गिरा दिया और भाग गया। फिर उस लड़की को फिर दवाखाना वहाखाना पहुंचाना पड़ा। फिर
0: तो ये आपने पहुंचाया उन्हें?
1: उन्होंने, हाँ
0: जी, बहुत अच्छा काम किया है अनिल जी आपने। और ऐसे ही अगर हर हर व्यक्ति आपकी तरह सोचे और इस तरह से काम करे, सोशल वर्क अपना खुद का काम समझकर, तो मुझे नहीं
1: हाँ
0: लगता
1: मैडम,
0: कि इंसानियत के लिए हम बोल सकते हैं कि इंसानियत कम हो रही है ना? पर आप खुद हो के आपने ये सब सारी चीजें की है, तो इस चीज के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। और अनिल जी, साथ ही साथ हम चाहते हैं आज आप इस प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं हमें प्लीज
1: और
0: बताइए।
1: शादी का गीत है मैडम, मुबारक हो तुमको शादी तुम्हारी।
0: जी, बिल्कुल अनिल जी, हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा संगीत। जरूर सुनिएगा
1: हाँ, थैंक यू मैडम,
0: जी।
1: आपकी आवाज बड़ी प्यारी लगी मैडम। क्या नाम है आपका?
0: जी, मेरा नाम वर्षा, बात कर रही हूँ मैं।
1: हाँ,
0: और
1: थैंक यू
0: आपसे बात
1: मैडम,
0: करके
1: थैंक यू,
0: बहुत अच्छा
1: धन्यवाद।
0: लगा अनिल जी। ऐसे
1: हाँ
0: ही
1: जी,
0: फोन करते
1: हाँ
0: रहिएगा और फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: बताइए
1: जी, मैं साधना बोल रही हूँ वर्धा से।
0: जी साधना, तो
1: गाना सुनना है कुछ कुछ होता है साजन जी घर आए, साजन जी घर।
0: अभी भी कुछ कुछ होता है साधना जी?
1: जी
0: कितने साल हो गए हैं वैसे?
1: 58 में चल रहे।
0: अरे बाप रे, काफी लंबा सफर आपने तय किया है और अभी भी आपको इंतजार है साजन के घर आने का। चलिए, बहुत खूब, बहुत बढ़िया आपका जो अंदाज है गाना बताने का और आपने जो चीज हमारे साथ शेयर की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साधना जी, आप करती क्या है?
1: घर में रहते मैडम,
0: और क्या करती है घर में रहकर?
1: विविध भारती सुनते
0: सुनते हैं कार्यक्रम, तो मैं बिल्कुल
1: रहते।
0: सुनना चाहूंगी कि आपको ऐसा कौन सा कार्यक्रम हमारा सबसे ज्यादा पसंद है जो आप हमेशा सुनते हैं?
1: मैं तो सुबह 8 बजे से मेरा विविध भारती चालू था, तो मेरे को समाचार ज्यादा पसंद है।
0: देश विदेशों की खबर रखना चाहती हैं आप?
1: सब रहती, सब मिलती है उसमें,
0: जी
1: जिगस्ता में भी मिलता है।
0: जी,
1: हेलो क्या बोलते हैं, हेलो डॉक्टर, 11 बजे अपनी वो
0: मधुमालती,
1: गाने, 12 बजे के, मतलब
0: हाँ,
1: दिन भर के पूरे कार्यक्रम देखते हैं 8 बजे तक।
0: 8 बजे तक तो आप ये सारे प्रोग्राम अपने किचन में सुनती है या दिन भर आप जहाँ जाती हैं वहाँ सुनती हैं?
1: नहीं, घर ही में सुनते हैं लगा के अपना FM रेडियो,
0: जी, और आप
1: रेडियो
0: अभी भी
1: लगा के
0: रेडियो ही
1: अपना
0: सुन
1: काम।
0: रही थी? जी, और आप काफी सारी बातों की जानकारी अभी आप इससे हासिल करती है, तो हमें साधना जी आपसे बात करके सही में बहुत अच्छा लगा। और चलिए जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत, आइए सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार। हेलो, मेरी पसंद इस
0: नमस्कार
1: कार्यक्रम में
0: नमस्कार।
1: करते हैं हम आपका स्वागत।
0: पिक्चर का नाम सुनाना।
1: जी, आपका नाम तो बताइए पहले, पिक्चर का नाम हम बाद में सुन लेंगे।
0: मदन तहीकर बोल रहे हम।
1: जी मदन
0: पिछली
1: जी।
0: बार दिया था नाम, मैंने गाना
1: जी
0: ही नहीं आया था मेरा वाला।
1: अच्छा, मदन जी माफी चाहते हैं क्योंकि कॉल कभी कभी बहुत ज्यादा होने की वजह से एक दो
0: अच्छा
1: कॉल हम नहीं चाहते हुए भी हमें स्किप करने होते हैं, बट आप जरूर फोन करते रहिएगा, हम आपकी फरमाइश पूरी करने की हमारे तरफ से
0: करते
1: पूरी
0: रहेंगे
1: कोशिश
0: हम फोन।
1: करेंगे। जी, और मदन जी आज बताइए, आज कौन सी फरमाइश लेकर आए हैं भाई आप?
0: थानेदार पिक्चर का सुना सकते क्या?
1: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: जीना है तो हंस के जिए, जीवन में एक दो जीना
1: क्या बात है भाई मदन जी, काफी खजाना है आपके पास गानों का, इतने प्यारे
0: गाना।
1: गीत है
0: अच्छा
1: आपके पास।
0: गाना अच्छा लगता है मेरे को।
1: चलिए, काफी शानदार गाना है ये, और हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करते हैं। आइए।

0: हेलो जी,
1: हेलो।
0: नमस्कार। सबसे पहले ना मैं आपका नाम जानना चाहूंगी, आपका नाम बताइए मुझे।
1: मेरा नाम दिनेश करने और मैं टेलर हूं मैम।
0: जी दिनेश जी, काफी बुलंद आवाज है आपकी, बताइए
1: हाँ
0: आप
1: जी,
0: क्या करते हैं आप।
1: मैं टेलर काम करता हूँ, मतलब वेस्टर्न कपड़े बनाता हूँ बुटीक में,
0: वाह वाह वाह,
1: मास्टर हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो मैडम कैसा है कि गाने सुन के थोड़ा सा अच्छी चीज बन जाती है पैटर्न वैटर्न सब,
0: क्या बात है, ये तो नई
1: तो
0: चीज
1: थोड़ा
0: सुन रहे हैं
1: माइंड
0: भाई
1: फ्रेश
0: हम।
1: रहता है।
0: जी, बहुत खूब। मतलब गानों के जरिए आप अपने फैशन को बना रहे हैं, क्या बात है, ये
1: मैडम
0: भी बहुत
1: हमारा
0: खूब
1: मूड
0: है।
1: उसके गाने सुनेंगी तो काम अच्छा बनता है हमारा, और दूसरी बात कैसे कोई चलता रहे, कोई नहीं रहता वहाँ पे बुटीक में,
0: जी
1: हम अकेले रेडियो के साथ रहते दिन भर, तो
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या
1: गाना
0: माहौल है।
1: कैसा हो कि अपने पसंद का हो तो और अच्छी बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने, और आपकी ये जो फरमाइश है दिनेश जी, हम इस
1: हाँ
0: प्रोग्राम
1: जी
0: में जरूर जरूर पूरी करेंगे।
1: जरूर
0: और
1: मैडम,
0: चलिए,
1: ठीक है
0: आप हमें कोई नए फिल्म का गाना बताइए।
1: मैडम। चांदनी फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुना सकते?
0: बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, चांदनी फिल्म का
1: अच्छा
0: टाइटल सॉन्ग हम आपको जरूर सुनवाते हैं, और सुनते रहिएगा प्रोग्राम हेलो मेरी
1: थैंक यू
0: पसंद।
1: मैडम।

0: समझाओ तुम्हें, प्यार सिखाओ तुम्हें।
1: दोस्तों, समय और रिश्ते दोनों की कीमत तब समझ आती है जब वो हमारे पास नहीं रहते। समय वापस नहीं आता और टूटे रिश्ते पहले जैसे नहीं बनते। इसलिए अपनों के साथ इतना वक्त जरूर बिताइए कि बाद में आपको पछतावा ना हो। तो दोस्तों, अब वक्त हो रहा है आपको ये भी बताने का कि इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हर शुक्रवार दिन में 12 बजे से लेकर 12:45 पर 6940067 2561010 और 2529266 हमारे इन्फो नंबर्स पर। तो दोस्तों, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अपने जीवन में उन प्यारे रिश्तों को संभाल के रखिए जो बहुत कीमती है। और आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें प्रस्तुति सहयोग मिला सारिका पाठक इनका, और अब इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अतुल साखरकर के साथ मैं आपकी प्यारी सी दोस्त वर्षा दारुंडे भालेकर लेती हूँ अब आपसे इजाजत। फिर मिलने के लिए नमस्कार।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। यह कार्यक्रम विविध भारती के नागपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। FM बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती का यह नागपुर केंद्र है। सुबह के ठीक 9 बजे है।

0: 10 लाखांची लॉटरी मला. वाव.
1: फसल्या ऑफर्स पासून सावधान.
2: आरबीआय सांगते,
3: जाणकार बना, सतर्क रहा.
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं. 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार.
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है.
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
6: हा माझा धाकटा भाऊ आहे ना, अतिशय खट्याळा आहे. कॉलेज मध्ये मार्कशीट फोटोशॉप करून बाबांना दाखवायचा. काल मी लाईट बिलावर 0 अमाऊंट पाहिली, वाटलं याने नक्की फोटोशॉप केलं असेल, नाहीतर वीज बिल 0 कसं येईल. विचारलं तर म्हणतो, दादा सगळी वरच्याची कृपा आहे, सोलर पॅनल आहेत ना. मी म्हटलं, ओहो हे भारी आहे रे.
7: पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना, सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा pmsuryaghar.gov.in. सूर्यघर.
8: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं.
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है.
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

श्रेया घोषाल, सुजैन डिमेलो और रूप कुमार राठौर की आवाज में सुन रहे थे वीर फिल्म से आप ये गाना, गुलजार के बोल, साजिद वाजिद का संगीत।

हजारा फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में ये गाना, जावेद अख्तर के बोल, संजीव कोहली का संगीत।

0: टैपॉन की आवाज में मेट्रो इन दिनों फिल्म से ये गाना, संदीप श्रीवास्तव के बोल, म्यूजिक है प्रीतम का।
1: असर हो तक

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अनवर फिल्म से, रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाजों में सईद कादरी के बोल, म्यूजिक है मिथुन का।

0: अनवर फिल्म से आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गाना। आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है रूप कुमार राठौर पर, तो जानिए इनके बारे में कुछ बातें, कुछ किस्से इस कार्यक्रम के बाद यानी 9:30 पर, जिसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात 9:30 पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफल।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नहीं तो वो किसी साज की सुनी या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद इज ऑल्सो प्रीमिक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

मेरा जन्म भी बम्बई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौर को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौर की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस, एक गौला टैंक पे एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी रादर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए, और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे, और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रूप कुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कौन कौन आते थे?
1: अबा जी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमीम अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खां साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौर को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

जमाना। लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: त्याच्यामध्ये मग ते मिनरल्स म्हणजे कॅल्शियम, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम वगैरे हे डिपॉझिट होते. तर हे जे डिपॉझिट वगैरे काम आहे, हे व्हिटॅमिन डीचं काम आहे. व्हिटॅमिन डी आहे, पॅराथॉर्मोन आहेत, असे पुष्कळ सारे गोष्टी आहेत. आपण पूर्ण डिटेल सांगू नाही शकत, कारण पण एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपला आहार व्यवस्थित पाहिजे.
1: पण नैसर्गिकरित्या जर आपल्याला आहार घ्यायचा आहे तर तो कसा घ्यावा?
0: एक्झॅक्टली. तर ते मिल्क आणि मिल्क प्रॉडक्ट म्हणजे दूध, दही, लोणी, ताक, याच्यामध्ये कॅल्शियम भरपूर राहते. फळं असतात जसे केळी झाली, सीताफळ झाली, याच्यामध्ये कॅल्शियम असते. आणि बाकीच्या भाज्यांमध्ये आहे, गोबी आहे, पत्तागोबी आहे, तीळ आहे, मेथी आहे, भेंडी आहे, अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. संत्रा, बदाम, चना, अंजीर.
1: सर आपण एक कॉल घेऊया.
0: ठीक आहे.
1: हॅलो.
2: हॅलो,
1: नमस्कार.
2: हॅलो, गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग सर, मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ बोलिए
2: सर. ये जिस डिजीज के बारे में आज आप बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस, सर क्या ये 100% क्योरेबल है? मतलब अपने इंडिया में तो हम सुनते हैं कि लेडीज को मतलब अबव 30 जो होती है उनकी कैल्शियम से मतलब हड्डियां वैसे भी कमजोर होती रहे, तो आए दिन मतलब लोग कई बार वॉशरूम में स्लिप होके मतलब गिर जाना, मतलब फ्रैक्चर हो जाना, तो सर इसका मतलब क्या सलूशन क्या है? मतलब क्या मतलब डेफिशिएंसी होती है क्या? मतलब क्या मतलब बताना चाहेंगे इस बारे में?
0: अभी इसी के ऊपर डिस्कशन चालू है, आप सुनते रहिए. क्योंकि क्या है कि मैंने अभी बताया कि लेडीज में मेनोपॉज के बाद ये हड्डियाँ कमजोर होना चालू हो जाता है. और अगर शुरू से आप बचपन से ही अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, बचपन से आपका डाइट अगर अच्छा रहेगा और आप एक्टिव रहेंगे, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की पॉसिबिलिटी कम होती है. ऑस्टियोपोरोसिस का ऐसा है कि बहुत सारे ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट जो है वो असिम्प्टोमेटिक रहते, उनको कोई तकलीफ नहीं रहती. बहुत बार कभी कभी उनको बैक पेन होना या हड्डी में पेन होना ये रख सकते हैं. ये ऑस्टियोपेनिया यानी जब जो बोन मास है वो कमजोर है, कम है, ऐसे कंडीशन में उनको बोनी पेन रह सकते हैं. उसमें बोन हड्डी के ऊपर दबाया तो उनको पेन होता है, ये भी हो सकता है. तो ऑस्टियोपोरोसिस ये और एडवांस स्टेज है, यानी बोन्स जो है और ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं और उसमें बोन डेंसिटी वगैरह करके उसका डायग्नोसिस होता है, लेकिन उसकी बहुत बार ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ये फॉर एग्जांपल किसी को अगर फ्रैक्चर हो गया स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50, तो फिर उसको अगर इवेल्यूएट करते हैं और ये फिर अपने को प्रिवेंशन करना है. तो प्रिवेंशन करने में एक तो डाइट हमने अभी बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक तो फॉस्फरस रिच डाइट, उसमें आता है नॉन वेज, मशरूम, फिर दही, दूध, ये जो लोनी और भाजीपाला काकड़ी वगैरह वटाना ये सब इसमें ये मिल जाता है. उसके बाद में दूध, अंजीर, पालक, बादाम और मटर, कोहड़े बिया, इसमें मैग्नीशियम वगैरह जास्त रहते. तो ये अगर डाइट आपका अच्छा रहे, एक्सरसाइज अच्छा रहे, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की पॉसिबिलिटी कम है. लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेंगी वैसे वैसे ये नेचुरल प्रोसेस है आपकी हड्डियाँ कमजोर होने की. उसको आप प्रिवेंट करते रहिए बाय डूइंग एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड जो चीज़ें अवॉइड करने के बारे में बताया कि भाई आपके एज ज़्यादा है, उस पीरियड में आपने जो इंजुरी कैसे आप अवॉइड करेंगे इसके बारे में भी बताया कि भाई बारिश के दिनों में बाहर मत निकलो, बाथरूम में कैसा अवॉइड करना है ये बताया है. दूसरा कैसा रहता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किसी को अगर डायग्नोज हो गया कि भाई दिख गया कि अपने को इसको फ्रैक्चर है और इसमें ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियाँ कमजोर है, बोन डेंसिटी कर लिया है, डायग्नोसिस हो गया, फिर अपने को ये भी देखना पड़ता है कि और कौन सी बीमारियाँ, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है. एक तो जैसा इस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, ये जो सेक्स हार्मोन है, इस्ट्रोजन लेडीज में और टेस्टोस्टेरॉन जेंट्स में, ये दो सेक्स हार्मोन है. तो इसकी कमी, जैसा लेडीज में मेनोपॉज होता है उसके बाद में इस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो जेंट्स में भी एंड्रोपॉज होता है जिसमें एज ज़्यादा होने के बाद में उनका टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है, तो उनकी हड्डियाँ भी कमजोर हो जाती हैं. तो और भी कई सारे बीमारी, जैसे कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जिसमें टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें जो क्रोमोसोम्स रहते हैं 6 क्रोमोसोम्स, XO मुझे नॉर्मल जो रहता है, जो लेडीज में XX रहता है और जेंट्स में XY रहता है, अगर ये X0 रहा तो उसको बोलते टर्नर सिंड्रोम, या XXY रहा तो उसको बोलते क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम. तो ये इसमें जो सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी इसमें भी ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है.
1: अच्छा.
0: फिर जो भी जैसा एनोरेक्सिया नर्वोजा करके एक बीमारी है जिसमें वो साइकेट्रिक बीमारी है जिसमें भूख नहीं लगती, उनको खाते नहीं हो, तो उनका डाइट प्रॉपर नहीं रहता, मतलब माल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द कॉज, कि भाई उनका न्यूट्रिशन बराबर नहीं है, इसके कारण उनकी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं.

0: उसके बाद में जो थायराइड जैसे हाइपर थायराइडिज्म जिसके अगर है उसके वजह से भी हड्डियां कमजोर हो जाती है, या जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है लेकिन वो थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रमाण में ले रहे हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। इसलिए थायराइड की अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका रेगुलर आप TSH मेजर करते रहना चाहिए। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो थायराइड का डोज है वो बराबर है कि नहीं है। फिर पैराथायराइड ग्लैंड्स रहते हैं, लीवर की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां, क्रॉनिक डिसीजेस, ये सारे डिसीजेस में ये होता है। कैंसर है, कैंसर मल्टीपल मतलब सेकेंडरीज रहते हैं, मतलब ब्रोन में स्प्रेड होता है कैंसर। मल्टीपल मायलोमा नाम का एक कैंसर है जो बोन में जाता है जिसकी वजह से मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, और ठीक है ना,
1: अच्छा अनेक गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे ऑस्टियोपोरोसिस होऊ शकतो। डॉक्टर कळमकर एक फोन येतोय, हॅलो।
2: हॅलो, गुड मॉर्निंग मॅडम। गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग
2: सर, मला एक विचारायचं, माझं मेनोपॉज 40 मध्येच झालं आणि आता माझं वय 50 आहे आणि रोज एक कॅल्शियमची टॅबलेट डॉक्टरनी सांगितलेली आहे, तर रोज घ्यायची की कसं काय, म्हणजे त्याच्यामुळे काही बॉडीवर रोज घ्यायची की नाही
0: असं, आणि
2: काय प्रिकॉशन म्हणजे काय घ्यायचं की ऑस्टियोपोरोसिस न हो म्हणून।
0: एक्झॅक्टली कसं आहे, तुमचं जे अर्ली मेनोपॉज जे आहे त्यांना ऑस्टियोपोरोसिसची शक्यता वाढते। 40 वर्ष तुम्हाला मेनोपॉज झाला आहे, तुमचं वय 50 वर्ष आहे, 10 वर्ष तुम्ही ऑलरेडी चांगले काढलेली आहे। आता तुम्ही त्यानंतर कॅल्शियमची तुम्ही एक गोळी घेऊन आले, साधारणपणे 1000 ते 1500 मिलीग्रॅम हे डेली रिक्वायरमेंट आहे कॅल्शियमचं। आता हे तुम्ही डाएटच्या फॉर्ममध्ये घ्या, जसं मी सांगितलं की दूध आणि दुधापासून बनलेले पदार्थ वगैरे जे आहे त्याच्यामध्ये कॅल्शियम राहते, फळं आहे, भाजीपाला आहे याच्यामध्ये राहते, ॲडिशनल तुम्ही घेऊन राहिले त्याच्यामध्ये नुकसान काही नाही, पण जास्तचा डोस घ्यायला नको। म्हणजे जास्त जर कॅल्शियम जर त्याच्यामुळे थोडासा हार्टचा प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता, म्हणजे हार्टचे जे कोरोनरी आर्टरीज वगैरे आहेत तिथे कॅल्शियम डिपॉझिट होते, आणि जे हार्टमध्ये जे कोरोनरी आर्टरीजमध्ये जे प्लेक्स बनतात त्याच्यामध्ये कॅल्शियम डिपॉझिट होते, म्हणून हार्टची पॉसिबिलिटी वाढते। इवन जे हार्टचे व्हॉल्व्स आहेत जे डिजनरेशन जर वयाप्रमाणे होते त्याच्यामध्ये सुद्धा कॅल्शियम डिपॉझिट होण्याची शक्यता जास्त होते, म्हणून वाजवीपेक्षा जास्त कॅल्शियम पण नको। दुसरी गोष्ट कसं आहे, जास्त जर कॅल्शियम झालं म्हणजे स्टोन्स फॉर्म होण्याची शक्यता, किडनीचे स्टोन, त्याच्यामुळे कॅल्शियम जे आहे तुम्ही घ्या, पण तिथे हे पहा की तुमचा डोस जो आहे तो बरोबर आहे की नाही आहे,
1: म्हणजे प्रमाणात घ्या।
0: 1000-1500 पर्यंत ठीक आहे, जास्त कॅल्शियम नका घेऊ। त्याच्यानंतर व्हिटॅमिन डी ची आवश्यकता आहे, कारण व्हिटॅमिन डी मुळे कॅल्शियमचं ऍब्सॉर्प्शन होते आणि त्याचं प्रॉपर डिपॉझिशन बोनमध्ये होते, आणि व्हिटॅमिन डी ची लेवल चेक करा, साधारणपणे 30 ते 50 या लेवलमध्ये व्हिटॅमिन डी असलं पाहिजे। 20 कमी असलं म्हणजे तुम्हाला डेफिशियन्सी आहे, 20 ते 30 आहे म्हणजे इन्सफिशियन्सी आहे, आणि 30 वरती जे आहे तर ते नॉर्मल आहे। तर त्या या वयामध्ये साधारणपणे 50 जवळपास ठेवा, म्हणजे तुम्हाला कॅल्शियम जी आहे कमी होणार नाही आणि ऑस्टियोपोरोसिस होणार नाही।
1: डॉक्टर कळमकर आणखी एक फोन येतोय, हॅलो।
3: जी मुझे बोलना था, बैक पेन रहता ही है और मुझे है माइल्ड डिस्क बल्ज डेसिकेशन एट एनुलर फिशर एट L4-L5 और डिस्क बल्ज एट C5-C6।
0: एज कितनी है?
3: 37 है सर, ये एक साल पहले का MRI है लेकिन अभी भी बैक पेन गया नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, कैसा है मैडम, देखो आपकी एज कम है, 37 की एज में आपको डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्सरसाइज वगैरह जो है बहुत कम रहता है। एक तो आप क्या है कि फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करिए, आप सामने की तरफ झुक के कोई चीज़ अगर उठाएंगे तो आपको जो डिस्क है वो पीछे सरकने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डिस्क पीछे सरक जाती है तो उसमें जो नर्व रूट्स वगैरह जो है या स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर प्रेशर आता है, और आपको जैसे सर्वाइकल भी इन्वॉल्वमेंट है, लंबर भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको ये स्पॉन्डिलोसिस जल्दी हुआ यानी आपका एजिंग जो है वो जल्दी हो रहा है, तो अभी उसके लिए वो एक्सरसाइज आते हैं जो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं, 3-4 प्रकार के एक्सरसाइज है जिसमें धनुरासन, चक्रासन ये वगैरह इस टाइप के एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, तो इससे आपको पेन रिलीफ रहेगा। पेन किलर भी ले सकते हैं लेकिन पेन किलर आपको सेफ लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोलॉन्ग पेन किलर से आपकी किडनी खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और पेन किलर से दूसरे भी प्रॉब्लम आते हैं, एसिडिटी बढ़ती है, फिर उसको अल्सर हो सकता है, इसलिए पेन किलर उतने ही लेना जितने आवश्यक है, और वो भी डॉक्टर्स से कंसल्ट करके लेना, सेफ पेन किलर लेना, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक्सरसाइज अच्छा रखिए, आपकी बोन हेल्थ अच्छी रखिए, प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह, क्योंकि क्या है सिर्फ इसमें सिर्फ डिस्क जो सरक रही है उसके कारण पेन है, ये बोलना डिफिकल्ट रहता है। कई बार जो बोन्स को अटैच्ड मसल्स है, लिगामेंट्स है, उस जो फैसिटल जॉइंट्स रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्व होने के कारण पेन रहता है।
1: अच्छा।
0: इवन जैसा इन्होंने बताया, इनका अगर एक्सरे किया, इनका ये एमआरआई में मिला होगा उनको जो फाइंडिंग जो उन्होंने बताया, तो उनका अगर एक्सरे भी करना चाहिए, एक्सरे में क्या आप लोगों को डेंसिटी मालूम पड़ जाता है।
1: अच्छा।

बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी। ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया तो एक उपन्यास मिला मुझे, लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है। रागे रागो

0: भी शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
1: तो ऐसा बोलो ना,
0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
2: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।

अलका याग्निक की आवाज़ में सईद राही का गीत सुना, संगीत था नदीम श्रवण का। कार्यक्रम में आइए अगला गीत सुनते हैं अभिजीत की आवाज़ में, गीत सुब्रत का।

मधुबालती सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी मंजुषा अम्बुलकर का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हमने किया है रंग दे बसंती इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है दलेर मेहंदी और चित्रा ने। गीत प्रसून जोशी का है और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

दिल के सबसे गहरे जज्बातों को बयान करने का एक खूबसूरत जरिया है आंखें। आंखें वो आईना है जिनमें प्यार, सच्चाई और दर्द साफ झलकते हैं। कहा जाता है आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आंखें वो जादू है किसी को अपना दीवाना बना दे। जब किसी की दिल की बात हो तो लफ्जों में ना कही जाए तो वो आंखें सब कह देती है। आइए अगला गीत सुनते हैं जानवर फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। गीत शैलेंद्र का है और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे घर फिल्म का गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत गुलजार का था और संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोते हो, एक निवेदन आहे का? जर आपणास आपल्या आवडीची मराठी चित्रपटातील गाणी, मराठी भावगीतं, भक्तिगीतं ऐकायची असतील, तर तुम्ही आम्हाला आमच्या हॅलो मनभावन या नवीन फोन इन कार्यक्रमात फोन करू शकता आणि आपली आवड आम्हाला कळवू शकता। दर गुरुवारी दुपारी 12 ते 12:30 दरम्यान आमचे फोन नंबर्स आहेत 6940067256010 आणि 2529266। हॅलो मनभावन या कार्यक्रमाचं प्रसारण करण्यात येईल दर रविवारी सकाळी 10 ते 10:30 या वेळेत। तेव्हा नक्की फोन करा आणि तुमच्या आवडीची सुमधुर मराठी गाणी ऐकण्यासाठी दर गुरुवारी दुपारी 12 ते 12:30 या वेळेत। कार्यक्रम आहे हॅलो मनभावन। निवेदन संपलं। श्रोताओ, आज हम बात कर रहे हैं आंखों की। आंखों में जो प्यार है वो दुनिया का आधार है। आंखों में जो प्यार है वो दुनिया का आधार है। आंखों का नूर जब चमकता है, प्रेमी का दिल धीरे धीरे धड़कता है। हर ख्वाब उसी से जुड़ा रहता है, हर सांस उसी का नाम बड़बड़ाता है। कार्यक्रम में आइए अगला गीत सुनते हैं पद्मावत फिल्म से, जिसे गाया है नीति मोहन ने। गीत सिद्धार्थ गरिमा का है और संगीत से सवारा है गरिमा ने।

आंखें जो कुदरत की देन है, जिससे हम दुनिया देख पाते हैं, लेकिन किसी किसी की आंखें इतनी खूबसूरत होती है कि हम उसे देख

किसी की आंखें नशीली, किसी की आंखें भूरी, किसी की आंखें छोटी तो किसी की आंखें बड़ी, बड़ी बड़ी आंखें चेहरे पर जैसे चार चांद लगा देती है। आइए मधुमालती कार्यक्रम में सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीत महबूब का है और संगीत से सवारा है इस्माइल दरबार ने।

0: 10 लाखांची लॉटरी मला. वाव.
1: फसल्या ऑफर्स पासून सावधान.
2: आरबीआय सांगते,
3: जाणकार बना, सतर्क रहा.
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं. 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार.
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है.
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
6: श्रोता, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कुदरत की सुंदर देन है आंखें. यही कुदरत और प्रकृति की सुंदरता मन को सुकून और शांति देती है.

हवाओं की सरसराहट कोई गीत सुनाती है, प्रकृति हर पल जीवन का अर्थ समझाती है, झरनों की आवाज में सुकून सा मिलता है, हर टूटा दिल भी यहाँ आकर मिलता है। मधुमालती कार्यक्रम में आइए, अब सुनते हैं अभिनेत्री फिल्म का गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इसे स्वरबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित

0: किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमदीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

राम और श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज है।

0: का सर्वदिखिया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल

0: ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प

0: बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया गीत आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर का गाया, राजा और रंग फिल्म से, आनंद बख्शी की रचना है।

0: शंकर जय किशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने, हसरत जयपुरी का लिखा ये नगमा आपने सुना फिल्म शिकार से।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को शुरू में ढाला लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल ने।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

ज्यादा फिल्म का दोगाना आपने सुना किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत की रचना की आनंद बख्शी ने। आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें, साहिल लुधियानवी की बोल।

0: आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ए धन जवान अपने।

बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, ये तो सही है कि आप जहाँ जहाँ हैं विविध भारती साथ साथ है, और साथ है सरगमी नगमों का जादू जो हमारे दिल की हर बात जानता है, कहता है और सुनता है। हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी के सफर में शामिल इन नगमों की परवाज का क्या कहना, और उन बातों, उन शिकायतों का भी क्या कहना जिनमें छुपा छुपा सा प्यार भी नजर आ रहा है, और यही बातें मिलकर बनाती हैं इस प्रोग्राम को सुरीला सफर। तो अब आज की इबारत से पहले उन श्रोताओं को बता दें जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाए हैं, तो लॉग इन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai, और इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और अब आपको बता दें आज की इबारत। एक रात दस्तक दी किसी ने, दरवाजा खोला तो देखा जैसे मेरी ही शक्ल, मेरा ही हमसाया। कहने लगा मैं तुम्हारी ही यादें हूँ, रैन बसेरा चाहता हूँ। याद करो वो भोर की किरणों का पनघट पर बसेरा, इसी पनघट पर जब बातें होती थीं। एक दिन जब खो गया कहीं कान का बाला, वो सूंधी रोटी, वो खिलौने, वो रेत की नाव, वो झाग के माझी, वो काठ की रेल, वो सीप के हाथी, वो मोम के चाक जो रुके न चले, वो संगी साथी, वो जादूगर का खेल, वो पगडंडी में दौड़ना, जब तुम्हारे आने से मेरी टूटी फूटी नाव सज जाती थी, कभी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते, कभी सोचते कि हमसे तो ये पायल ही अच्छी है, काश अपनी आंखों में बसा कर ये तस्वीर रख लूं, फिर कोई दिल तोड़ चला। सखियां भी एक एक कर ससुराल चली गईं। एक रोज डाकिया डाक लाया, पता चला ये शहर ही अब जिंदगी बन गए, और मन गांव में बस गया। शहर में कमरे ज्यादा हैं, घर बड़ा है, शायद इतना बड़ा कि कोई मिलता नहीं। शहर की इस आपाधापी में कोई पास बैठता नहीं, हाल पूछता नहीं। सुनो, चलो उसी मनमोहक गांव में वापस चलें जो आज भी वैसा ही है, जिसकी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है। तो ये थी श्रोताओं आज की इबारत, आज का टेक्स्ट, और अब आपको शब्दों को ढूंढना है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने तो शब्द पहचान लिए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों के बारे में भी लिखा है, तो देखते हैं कि आज कौन से गीत शामिल होते हैं।

श्रोताओ, गांव की जो दिनचर्या होती है वो बड़ी गजब होती है। तो गांव में या अभी आपकी दिनचर्या क्या है? अगर जब कभी आप गांव में थे तो उसे किस तरह से अब के समय से आप जो है मैच कर सकते हैं कि अब शहरों में जो सोना उठना बैठना उसका समय और गांव में जो दिनचर्या होती थी वो भोर के समय, जी हाँ, पनघट पर बहुत सारी पनिहारें नजर आ जाएंगी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन की भाग दौड़ में मन आज भी अपने गाँव, अपने बचपन और उन अनमोल रिश्तों में बसा हुआ है, जहाँ बचपन की यादें, गाँव की मिट्टी, बिछड़े साथी और पुरानी यादें आज भी दिल में घर बनाए हुए हैं। और बहुत सारे गीत भी इन्होंने बताए हैं, हमें सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सभी को प्रणाम, तो आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। विविध भारती के सुरीले सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आजादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ छपाकछई खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता के नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक, इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो, लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गाँव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओं, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है, क्या कुछ है?

जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं, तो ये हमें ज़रूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत सारे गीतों के बारे में, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज़ गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो, तो आप ज़रूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ ख़ास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं, गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ, तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में किसी भी वाद विवाद की चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गाँव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गाँव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप भी आज भी आपकी यादों में बसा है, और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपकी गांव की यादगार चीज है।

तो अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप जरूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं, तो हमें जरूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। और

गांव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं, कि गांव में जो यादें हैं, रहत का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं दूर रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना, जो जीना तमान पर फिल्माया गया, और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और श्रोता ने लिखा, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाएं तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताजी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाजें अब भी दुनिया में नहीं, पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रख कर कह रही हूं अपना ध्यान रखना। वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ मिलाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट पगडंडी खेत खलिहान नदी झरने रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से पल भरे पल जीते थे। लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन। बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

गया ये प्यारा सा गीत। आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से, और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थी। अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी, अब वो पक्की सड़क।

विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है। सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है। और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रोताओं, कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती हैं कि गांव की अनमोल यादें ताज़ा हो रही हैं इस इबारत में। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सौंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरे बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं। उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर, और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात दस्तक, यादें, भोर, पनगट, सौंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव। जी हाँ, और गीत भी बताएं। नाव की अगर कोई सैर आपको याद हो

नया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें। श्रोताओ, गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है। यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। बगीचे से आम चुराकर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है आपके गांव की। रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफर किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय होगा, हमने इबारत पढ़ ली है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा। गांव में अपनापन होता है, वही शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट के ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं, और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है। बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें। एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताज़ा हो गईं, और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियाँ, वो आंगन में सब कुछ समेटना, और रोज़गार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोज़गार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, बिछड़ शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भये पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीज़ें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है।

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे, बहुत मजा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गाँव के चारों तरफ पहाड़ है जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गाँव का नाम ठोकर है। मेरे गाँव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफर है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर शहर में रहने लगे हैं लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए। आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन। हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने रुला दिया, वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही हैं, ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ। उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी मैंने आठ गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पनघट पे। जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए, हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है। ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है। बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीजें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है? क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीजें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे, वो कागज की पुड़िया के समान बांध के ना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था। आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

0: लेट आती है बाबू।
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख दो ना।

ये गीत आप सुन रहे थे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोता, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसी उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को, बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं, और कलाकार

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना, सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक, और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदोद, जो नर्मदा नदी पर बसा है, वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ के मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक से।

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीजों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफर सम्पन्न होता है।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल। थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

मैंने नहीं तो

खेल हमारे नज़रिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने

0: के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे newzonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा

0: कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले

0: खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
1: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने

0: फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

0: किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो
1: और देखिए खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं?

0: बारे में अपनी बातें वो जरूर
1: बताएं। आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं?
0: इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी, और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
1: भीमव्वा डोडाबलप्पा शिलेख की अथारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
1: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
0: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
1: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
0: जी,
1: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के उसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
0: जी?
1: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
0: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे।
1: जी हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है
1: जी
0: और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेयता, जो आपने भी बताया,
1: जी
0: जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है, कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानियों को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना,
0: हाँ
1: उस
0: जी
1: तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं,
1: जी
0: और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है।
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती, और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सकें, ताकि जो तोगलू गोम्बेयता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सके।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है,
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा को भारत का 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी,
0: और एक गीत सुन लें अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल
0: खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो
1: हाँ
0: डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता
1: बिल्कुल। और अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं ना।
0: हाँ
1: तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती है कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला वो बोल
0: बिल्कुल।
1: रहे हैं।
0: और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है।
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने की खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके, और परिवार में जिस

0: जैसे कि खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए. क्योंकि
1: बिल्कुल
0: कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं ना, तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित
1: बिल्कुल, वो
0: करना
1: जिस
0: बहुत
1: तरीके के
0: जरूरी
1: खेल
0: है.
1: में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए.
0: जी
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है. पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना, सब लुप्त हो गए हैं. आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना. खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है.
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके. और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें. ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है. और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं. और यही वो समय होता है आरती, जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है.
1: बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है खेल के को महत्व देना. अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा.
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी
1: बिल्कुल
0: खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है,
0: भाग
1: साइकिल
0: दौड़ते
1: चलाना
0: हैं.
1: है, बहुत
0: हाँ,
1: सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं.
0: लुका छिपी भी
1: लुका छिपी खेलते थे.
0: खेलते थे और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा किए, सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं उन
1: बिल्कुल, बहुत
0: पत्थरों
1: से
0: के
1: ऐसे
0: टुकड़ों
1: खेल
0: को.
1: हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं. और
0: जी
1: जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है.
0: जी
1: तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर. तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है. तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना.
0: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके. संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे. और हम एक गीत सुन लें, फिर बात
1: बिल्कुल
0: को आगे
1: सुनते हैं.
0: बढ़ाएंगे.

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में
1: और
0: बड़ी
1: मजा आता
0: रुचि रहती है।
1: है।
0: तो देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने
0: बिल्कुल
1: कि
0: सही
1: हम
0: बात
1: भी
0: है।
1: अपने
0: और
1: बचपन
0: इस
1: में पहुंच
0: साल
1: जाते हैं।
0: जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल
1: बिल्कुल
0: खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती है ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं,
0: जी
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं ताकि आप उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं।
1: बिल्कुल
0: और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है।
1: सुरक्षित नहीं।
0: हर बार बच्चे के साथ कोई जाए ये जरूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले। तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो
1: बिल्कुल
0: बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का
1: बिल्कुल
0: ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके से उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत
0: अभी
1: कुछ
0: जैसे बारिश का जब
1: सीखते हैं।
0: मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला
1: हाँ
0: कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना
1: बिल्कुल
0: विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है। बस
1: बिल्कुल
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: बिल्कुल। और
0: हैं।
1: हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए, और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जब
1: बहुत
0: बच्चों को
1: जरूरी है।
0: धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है।
1: बिल्कुल। और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता
0: जी
1: है कभी कभी।
0: भाई, बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देख के बारे में समझ नहीं साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे, कहते हैं ना कि हमारी हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद किया है, वो क्या करता है, वो ये करने लगा लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव, तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं, वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है

0: कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं, हाँ। तो वहाँ हमें बहुत सारे एक लाइक मिले,
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
0: वो लाइक कितने बढ़ गए,
1: वो उसी में लगे रहते हैं।
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं, क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है। बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते। तो हर जो जो जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
0: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना इस तरह से, उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रही हैं,
1: जीवन है कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं।
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना।

0: बहुत मीठा, बहुत सुरीला गीत हमने सुना. और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर. हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का
1: दिखावा करना.
0: जी
1: बिल्कुल. और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें. क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है. खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए. मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज है हम खुश हैं इसमें, वो चीज होनी चाहिए.
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे.
1: बिल्कुल.
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ. हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं. सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है. जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं. और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है. खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है. बहुत सही बात लिखी है.
1: बहुत सही बात. और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है. असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं.

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में. एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को. जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है. दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है. इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो.
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने. और इसी के साथ एक और हमारी श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए. खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते. दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता. और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूं, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूं, तो आप सभी शक्की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है. तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
0: बिल्कुल सही बात है. और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है, तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे. और जब बात सुनने की आ रही है, तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है.
1: बहुत जरूरी.
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं. कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है. इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है.
1: बहुत जरूरी है. और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ ली हो रही, तो बस माचिस की तीली लेके करने लगे, तो वो बहुत खतरनाक.
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती
1: है. हाँ, हेयर पिन, चाबी लेता कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं, तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो. तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है. और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना, बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है. उससे ज्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा.
0: देखो जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं. इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है. कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं. तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें. जो चाबी नुकीली चीजें, हेयर पिन, इनका तो कभी ना करें.
1: आप इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए. वो सब चीजें प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुराने जो होते हैं वो बर्ड्स, उसमें वो फंगस भी होती है, तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है. इसलिए ये सब चीजें आप ना प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है. और दूसरी चीज ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए. और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है, कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है, क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं. तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही.
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है, तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही. एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है, तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है. तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना है.
1: सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आपको

0: सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50, उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए। आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर बाद अपने दूसरे कान में लगाए, इससे क्या होता है ना, कान आपका ऐसे पर्दे पर उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए। आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उस चीज से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में।
1: जी।
0: अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं आज के दिन। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: हिलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की? लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना
1: जी? इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले की बात हुई है विविध भारती में फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे। बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: महीने से ज्यादा ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर तब नहीं होते थे हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर के आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए, और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो भी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी,
0: पसीना आता है।
1: जी,
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं? आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी, हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते है ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का, आपके गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी, काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे, खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ मैम, किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे, बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे, फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है, मैं रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, आपको याद करूँ पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा, एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं, है ना? तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ, इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा, कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है, कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ, जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम, क्या बोलते सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी मुहावरे से साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा, छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोगों के चले जमाना जैसा था। पहली से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: फिर आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेन में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, जो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो सपनों

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और ईद भारतीय के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ। मैं आपका झमकार सुन के मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी, और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने के लिए देती थी दीदी,
0: क्यों
1: लड़की थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपने पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम था खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम नमस्कार, विविध भारती।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर बारसी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सफर अच्छा लगता है आदमी नई चार करे ना तुम कार्यक्रम सुहाना सफर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश गीत और अच्छे कार्यक्रम है
0: वो आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता हूँ।
0: हाँ बताइए गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: बिल्कुल वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया ये गीत सुनवाए मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसंतर बोलो। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम, इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता है।
0: अच्छा, समय रहते घर पहुँच जाते हो?
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा इसे करते रहता हूँ, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान, और दूसरा है।
0: और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत भी हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है। हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने

0: सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियाँ हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछें तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था। और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन जी मैम आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल सिमट करके रह गए हैं बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है व्यक्तित्व होती है वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदतें डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते ही ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविद भारती।
1: मैं अमल बसमटारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और साई का

0: खेती है हमारा, और सुपारी वगैरह लगाता है, और सब्जी का भी खेती लगाता है।
1: चाय का खेती भी करते हैं?
0: जी जी असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
1: बिल्कुल, असम की चाय। कौन सी चाय? खुशबूदार पत्तियाँ?
0: जी जी जी
1: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है। काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
0: नहीं, हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी, एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
0: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है, और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
1: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
0: बनाती भी है और बजाती भी है।
1: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
0: बम्बू से बनाता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है। तो बताइए, चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी। फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
0: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ तो दीपक जी, और क्या करती हैं? इसके अलावा कोई और शौक है
1: जी,
0: आपके?
1: मैं खेती किसानी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको स्पोर्ट्स?

0: क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था
1: थोड़ा? हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: खेलना पसंद है मेरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो,
1: जी
0: है ना? कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है तब।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

0: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाती हो, कुछ कह जाती हो।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: मैं

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

0: उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहां एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।
1: बाहों

सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राण वायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तराने नए पुराने में। मैं हूं विधि जैन, नमस्कार।

हम सुन रहे थे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का यह गीत अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन के संगीत के साथ।

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत, अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में, समीर के बोल और ए आर रहमान के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे गीत द बर्निंग ट्रेन फिल्म से। मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के हैं बोल और राहुल देववर्मन का है संगीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
4: बेचारा
5: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
5: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
6: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
5: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
5: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
7: तराने नए

आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में दिल का रिश्ता फिल्म से यह गीत अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण की आवाजें, समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत है।

हम सुन रहे थे ये गीत कुर्बानी फिल्म से, कंचन मनहर उदास और आनंद की आवाज़ में इंदिवर ने के इसके बोल लिखे हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं हम तराने नए पुराने, और अब हम चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने नए पुराने। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, देश की सुरीली धड़कन। ध्वनि तरंगों के ताल पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनिएगा दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा चंद लम्हों के लिए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: शाम के 6 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज MT सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
2: We attach high importance to the welfare and well-being.
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमरीकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को MT मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ठंडी शुद्ध नमक देना शुद्ध नहीं समझते वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है
1: तो ऐसा बोलो ना
0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान ये हुई ना बात
2: क्यों छोटे साहब वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है
3: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
5: श्रोतो आपण ऐकतात कार्यक्रम सांजधारा या जगताचा निर्माणकर्ता कोण आहे हे आम्हाला संतांनी शिकवलंय एकच तत्व बीज सर्वांमध्ये समान आहे सर्व जीव शिव आहे सुरेश वाडकर आरती अंकलीकर टिकेकर यांच्या स्वरात प्रवीण दवणे यांचं हे गीत संगीतकार श्रीधर फडके

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अमरावती, केशवराव भोळे यांचं जन्मगाव, देशाच्या महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक श्रीमंतीत विदर्भाचं फार मोठं योगदान आहे। वीर वामनराव जोशी, पंडित वसंतराव देशपांडे, सुरेश भट, दारवेकर मास्तर, महेश एलकुंचवार, राम शेवाळकर, ग्रेस म्हणजे माणिक गोडघाटे, अशी जी मोठी नामावली आहे त्यापैकीच एक महत्त्वाचं नाव संगीतकार, संगीत समीक्षक केशवराव भोळे। आंधळ्यांची शाळा या नाटकाचं त्याकाळी 100 प्रयोग झाले। या नाटकातील नायिका होत्या दुर्गा केळेकर। केशवरावांचा त्यांच्याशीच विवाह झाला, याच त्या नामवंत गायिका ज्योत्स्ना भोळे। ऐकूया राजा बडे यांची ही रचना, पु ल देशपांडे यांनी स्वरबद्ध केलेली, स्वर ज्योत्स्ना भोळे यांचा।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जयमाला में। मैं हूँ विधि जैन, हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूँ। फौजी भाइयों को विशेष प्रणाम करती हूँ और यह सुंदर सा गीत भारतीय सेना के नाम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए। देश के लिए जिए, देश पर मिटे, समर्पण का

भारतीय सेना के लिए इस प्यारे से वंदन गीत के साथ में। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम जयमाला की। पहला गीत हम ले रहे हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोलों के साथ, शंकर जयकिशन का संगीत है, जिस देश में गंगा बहती है, फिल्म से।

हम सुन रहे थे ये गीत तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला में अगला गीत, जो कि है साथी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल और नौशाद का है संगीत।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है जयमाला। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला का अगला गीत, जो कि है फिल्म आया सावन झूमके से। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के हैं बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला में एक और सुंदर सा गीत, जो कि है सौदागर फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन का ही है संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत वापस फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है जयमाला।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।
1: हम सुन रहे थे सिलसिला फिल्म का ये गीत अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरे के संगीत के साथ। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम जयमाला। नमस्कार।

0: आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म निर्देशक इकबाल अली से। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता।
0: आज सुनिए दूसरा भाग।
1: कल के लिए अपना कोई प्रोग्राम तो बता।
0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ इकबाल अली साहब हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे दिलचस्प बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत इकबाल अली साहब।
2: शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए राजेश हमाल जी एक नेपाल के आज के सुपरस्टार हैं वहाँ के।
0: अच्छा,
2: उनके विषय में भी एक दो शब्द आपको बता देता हूँ। छत्तीस जी करके एक थे, वो डायरेक्टर ही थे वहाँ के, काफी फेमस डायरेक्टर थे नेपाल के, सतीश कुमार सर
0: जी
2: अंधेरी में रहते थे। सतीश जी ने मुझे कॉल करके बुलाया।

0: नेपाली फिल्म का नाम था गोपी किशन, तो उन्होंने बोला कि आपको पूरी फिल्म करनी है।
1: जी जी,
0: मैंने सर वो पूरी फिल्म की, राजेश हमाल जी की फर्स्ट फिल्म थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर वो फिल्म जो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली हुई थी नेपाल में,
1: ओके,
0: और पहली फिल्म थी राजेश हमाल जी की, आज वहां के सुपरस्टार हैं। तो ऐसा मैंने सर बहुत सी फिल्में की और सीखता गया, अभी भी सीख ही रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, उम्र भी होती जा रही है, सीखने में तो जीवन निकल जाएगा, पूरा जीवन में आदमी कभी पूरा हो नहीं सकता है।
1: जी जी,
0: तो मैं स्वतंत्र रूप से फिर मैंने सबसे पहले तो यूनियन ज्वाइन की, मेंबर बना मैं, के बाद में सर फिर मैंने स्वतंत्र रूप से निर्देशन के क्षेत्र में मैंने संघर्ष शुरू किया। तो एक प्रोड्यूसर थे, उनका नाम था अजय शाह, और उनके एक साथी थे हितेश शाह, अजय शाह हितेश शाह, ये दोनों महावीर सीरियल बना रहे थे।
1: जी जी,
0: भगवान महावीर, और उस दौर के अंदर काफी मतलब सीरियलों का दौर था, तो बड़ी बड़ी सीरियलें आ रही थी। तो किसी ने इनको सजेस्ट किया कि यार वो लड़का जो है ना इकबाल अली, उसको लो आप, पता नहीं किसी ने तारीफ कर दी कि मेरी।
1: जी जी,
0: तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये सीरियल बनानी है, मैथोलॉजिकल सीरियल है, भगवान महावीर के ऊपर है, और मुझे पहले इनके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा, मुझे इनके बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कहीं कोई मुझसे गलती ना हो जाए।
1: जी जी,
0: तो सर मैं तुरंत आपको हाँ नहीं बोल सकता हूँ। तो सर देखिए, उनकी मानता, उन्होंने मुझे फुल हेल्प की, और मैंने 2 साल तक, मतलब ये समझ लीजिए कि मैं जैन हो गया, और 2 साल तक मैं मतलब बड़े बड़े गुरुओं से मिलता गया। हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो जैन थे दोनों, तो वो मुझे ले जाते थे, मैंने उनकी किताबें पढ़ी, महावीर पुराण पढ़ी। 2 साल तक मैंने सर बहुत मेहनत की, और ये 2 सालों में मैंने कोई काम नहीं किया, और मैं थोड़ा फाइनेंशियली परेशान तो होता था, क्योंकि थोड़ा गरीब आदमी हूं मैं भी, लेकिन एक शौक था मुझे, जुनून था मेरे अंदर कि नहीं, मुझे अगर करना है तो करना है, और ईमानदारी से करना है, और आगे एक कामयाब निर्देशक बनना है, ये एक मेरे अंदर वो था।
1: जी,
0: तो सर मैंने भगवान महावीर सीरियल जो है, फिर हमने उमरगांव के अंदर वृंदावन स्टूडियो है जहां पर रामायण वगैरह की शूटिंग हुई थी, तो पटेल साहब का है, अभी तो उनका ध्यान हो गया, बहुत नेक इंसान थे। उमरगांव में हम गए, उमरगांव में हमने सेट वगैरह लगाया। सर पहले क्या था कि आप जानते होंगे कि पायलट एपिसोड बनते थे दूरदर्शन के लिए, कि भाई आप 4 पायलट बनाइए, वो पहले दीजिए, हाँ अप्रूवल होंगे, उसके बाद में फिर आपको वो मिलेगा, टाइम वगैरह जो भी है, स्पॉन्सर वगैरह जो भी है। तो मैंने वो 4 एपिसोड मेहनत करके उस 4 एपिसोड को मैंने कंप्लीट किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि वो 4 एपिसोड को बनाने के अंदर मुझे कम से कम 3-4 साल लग गए।
1: अरे बाप रे,
0: 3-4 साल इसलिए लगे कि मैं 3 साल तक तो अध्ययन ही करता रहा जैन धर्म के बारे में, भगवान महावीर के बारे में जानने की।
1: जी,
0: और उसके बाद में फिर साल भर तो मुझे मतलब उसको पिक्चराइजेशन करने में लग गया, क्योंकि कॉस्ट्यूम ड्रामा था, और उस टाइम बड़ा टफ मामला था सर, दूरदर्शन के ऊपर बड़ी बड़ी सीरियलें आ रही थी उस टाइप की, और न्यूज़पेपरों के अंदर काफी चर्चे, मुझे काम भी तो फिर उस हिसाब से करना था, और मेरा तो मतलब सब कुछ था इसके ऊपर ही दारोमदार था। तो मैंने सर वो बहुत खूबसूरती से मैंने वो 4 एपिसोड बनाए, लेकिन वहां भी नसीब ने साथ नहीं दिया, कुछ प्रोड्यूसर को आपस में कुछ उनका था मामला, कुछ जमा नहीं, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया।
1: ओहो,
0: बहुत बड़ा धक्का लगा, मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, और मैंने मेरा पूरा समय मेरा इसमें गया, खैर होता है जिंदगी के अंदर। फिर संघर्ष में लग गया सर, संघर्ष करता रहा, फिर अब मुझे अब तो जागो फिल्म मेरी वो मैंने कंप्लीट की, मतलब ये सोच लीजिए कि मैंने कम से कम 20-25 फिल्में मेरी शुरू हुई होगी, कुछ मुहूर्त हुआ, कुछ 2-4-5 रील बनी, कुछ 10-15 दिन की शूटिंग हुई, कुछ ये हुई, लेकिन मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, हमेशा प्रोड्यूसर की तरफ से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते थे, और पिक्चरें बंद हो जाती थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम बोलिए, कहीं प्रोड्यूसर का ध्यान हो गया, कहीं कुछ हो गया, बड़े मसले हुए मेरे साथ में।
1: जी जी,
0: हाँ, बहुत संघर्ष मेरी लाइफ में रहा सर। तो उसके बाद में अब तो जागो मैंने एक फिल्म बनाई, मैंने ईश्वर से अल्लाह से ये प्रार्थना किया सबसे पहले कि मालिक अब ऐसा कुछ मत होने देना, इस फिल्म को तो कंप्लीट करवा दे। तो सर वो मेरी फिल्म कंप्लीट हुई, मैंने राजस्थान में शूट किया।
1: जी,
0: उसके अंदर तो सर ऐसा हुआ कि जो दो हमारे जो प्रोड्यूसर थे, एक अनिल चेलानी साहब और एक विजय शर्मा साहब, बहुत नेक इंसान है वो दोनों, जो कलाकार थे, थिएटर के आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि इकबाल जी हम इसमें एक्टिंग करेंगे। तो मैंने ठीक है सर कोई बात नहीं, एक कहानी लिख देते हैं, एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, आप बताइए आपको किस टाइप का आइडिया आपका है। उन्होंने बताया इस टाइप का है, हमने उस पर काम शुरू कर दिया, वो फिल्म हमने कंप्लीट कर दी सर, और बहुत बेहतरीन हमारी फिल्म बनी वो, लेकिन सब नए आर्टिस्ट थे, पहला कोई फेमस था नहीं फिल्म के अंदर, आप तो जानते हैं कि पोस्टर के ऊपर जो है वो कम से कम, अगर फिल्म का पोस्टर लगता है सिनेमा हॉल के बाहर तो उसमें कम से कम कुछ चर्चित चेहरे तो होने चाहिए ना।
1: जी जी,
0: तो उस हिसाब से शायद हम उस पिक्चर में भी सही ढंग से सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा उस फिल्म के बारे में, देखिए इरोज कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी फिल्में चाहे वो शाहरुख साहब की हो, चाहे वो अजय देवगन साहब की हो, या सलमान भाई की हो, बड़ी बड़ी फिल्में जो है वो करते हैं, अपना एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया, तो उसमें मेरी फिल्म को ही सजेस्ट किया।
1: जी जी
0: और मेरी फिल्म को ले

0: लिया उन्होंने, और अब तो जागो को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया हीरोज ने।
1: बिल्कुल,
0: तो ये एक मेरे लिए कामयाबी वाली बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए।
1: इसके बाद आपने क्या किया?
0: इसके बाद एक शॉर्ट मूवी बनाई, वो मुंबई एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, मुंबई इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो उसके बाद में मेरी उम्र भर की एक मेरी एक वो थी, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला।
1: जी जी,
0: 2022 में। उसके बाद में फिर मैंने एक मूवी और बनाई, शॉर्ट मूवी। अब मैं थोड़ा सा, मतलब क्या है कि मैं अपने आप को ये करने के लिए, मैं भाई काम तो काम है।
1: जी जी जी।
0: फिर उसके बाद में मैंने देवता बनाई। सर देखिए, वो देवता भी जो है मेरी चले गई खजुराहो इंटरनेशनल के अंदर, उसको भी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिल गया।
1: जी जी।
0: उसके बाद में सर मैंने अभी फिलहाल मैंने 5 एपिसोड आखिर कौन वेब सीरीज, बहुत प्यारी वेब सीरीज है, और उसके साथ आमिर खान साहब एक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उस फिल्म के अंदर। हम लोगों ने वो बहुत प्यारी वेब सीरीज, सस्पेंस वेब सीरीज है, तो वो बन चुकी है, बस अभी हम OTT पे बहुत जल्दी आएगी, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। और अभी तो मेरे काफ़ी प्रोड्यूसरों से मीटिंग चल रही है, और काफ़ी मतलब प्रोजेक्ट हैं मेरे हाथ में, बस अब वो कंप्लीट होंगे उसके बाद में फिर देखेंगे क्या होता है।
1: बिल्कुल
0: सर, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ।
1: जी बताइए।
0: वो ये है कि मैंने तो संघर्ष किया,
1: जी
0: 35 वर्ष संघर्ष किया, संघर्ष क्या होता है ये मुझे पता है। तो सर मैंने एक अपना चैनल बनाया।
1: अच्छा,
0: वन टेक।
1: ओके।
0: और उसमें मैंने ये सोचा कि जो संघर्षशील लोग हैं, जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं,
1: यस,
0: उनकी प्रतिभाओं को जो मैं लोगों के सामने लाऊं, तो सर मैं उसमें बहुत कामयाब हो गया। तकरीबन आज समझ लीजिए कि 10 एपिसोड उसके मैंने कंप्लीट कर दिए हैं।
1: जी जी।
0: उसमें मैंने फिरोज बॉस करके एक फाइट मास्टर है, बहुत काफी फेमस फाइट मास्टर है और बहुत नेक इंसान है, मैंने सबसे पहले उनका एक प्रोग्राम बनाया, उसके ऊपर उनकी प्रतिभाएं बताई, उसके अंदर उनका इंटरव्यू लिया। देखिए, ये तो एक ऊपर वाले की देन होती है, आदमी अगर सच्चे दिल से अगर मेहनत करता है, लगन करता है, तो ईश्वर उसको जरूर कामयाब करता है। तो कुछ ऐसा हुआ कि फिर से मुंबई जो फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल के अंदर उस एपिसोड को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया।
1: अरे वाह,
0: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। फिर मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा हो गई, और मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैं अभी मतलब मेरा एक प्रोग्राम आता है, जो मैं नई प्रतिभाएं हैं, जो हमारे भारतवर्ष में, भारत देश के अंदर जो प्रतिभाशाली लोग हैं, और जिनकी प्रतिभाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनका प्रोग्राम बनाऊं, दर्शकों तक मैं वो पहुंचाऊं। तो मैं ये काम भी करता हूं, और निःशुल्क करता हूं सर, और मैं उसमें कामयाब भी हूं, और ईश्वर चाहेगा तो आगे भी कामयाबी मिलेगी।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आप आए और अपने सफर के बारे में आपने अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने का।
0: धन्यवाद।
2: ओ लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली, तेरा नाम।

0: फिल्म निर्देशक इकबाल अली से बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। अंगना में बाबा द्वारे पे मां। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले।
1: कैसे आए गौरी हम तोहरे घर मां।
0: प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आज हवा महल में सुनिए चंद्र भारद्वाज की लिखी नाटिका कटते कगारी।

0: आनंद।
1: हेलो नीरजा, आज कैसे भूल पड़ी?
0: भूलती ही कब हूँ, हर पल तो आके तुम्हें ही खोजा करती हूँ। न जाने तुम्हारी सांवली सलोनी सूरत में कैसा आकर्षण है कि सासों की बंसी तुम्हारे ही नाम को तैरती रहती है।
1: बस बहने लगी ना भावलोक में।
0: सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत रिंग खरीदी है, देखो।

0: जैक्सन, आज शाम पिक्चर देखने चलोगे?
1: मेरा आज तो आर्ट्स फैकल्टी में लेक्चर है।
2: ओ डार्लिंग, तुम तो हर समय व्यस्त रहते हो, मेरा जरा भी ख्याल नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती हूँ, कितने सपने सजाती हूँ, पर तुम पर कोई असर नहीं होता। The pain of loving you is almost more than I can bear.
1: मुझे देर हो रही है, तुम्हें कोई खास बात करनी है?
0: कहने को तो बहुत कुछ है ना। कल रात मैंने एक सपना देखा, तुम गुलाब का एक फूल लाए हो और चुपके से मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। कहने लगे, नीरजा ये फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं? सच, उस समय मैं कितनी खुश थी, जैसे फूल पत्ती के प्रेम पर जिंदा रहता है ना, बस ऐसे ही मैं तुम्हारी। काश ये सपना असली होता।
1: सपना वही देखते हैं जो अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाते।
0: गलत, जो जिसे प्रेम करता है वही उसका सपना देखता है।
1: ये जानते हुए भी तुम मुझसे प्रेम करती हो?
0: ये भी कोई पूछने की बात है?
1: तुम्हें गलत फहमी।
0: मुझे वो भी प्रिय है क्योंकि वो तुम्हारी ही दी हुई है।
1: ये तुम्हारे अनुराग की चरम सीमा है नीरजा, जो सत्य को जानते हुए भी तुम अनंत की ओर बढ़ रही हो।
0: क्या करूं, अनंत पद कामी जो ठहरी।
1: तुम्हें समझाना मुश्किल है।
0: एक बात मानोगे?
1: क्या?
0: कल शाम हमारे कॉलेज के सालाना जलसे में मेरा डांस का प्रोग्राम है, आओगे ना?
1: कल तो मैं बहुत बिजी हूँ।
0: प्लीज, कैसे भी आइए।
1: देखो मैं मजबूर हूँ। ओके, फिर मिलेंगे।
0: निष्ठुर। अरे हाय, सुनिए तो आनंद जी, दिल तोड़ दिया बिचारी का। दर्शन के प्यासे दो लोचन, बिन देखे अफुलाते, हर सिंगार के फूल से सपने पलछिन में मुरझाते।
3: देख झरना, उत्तम मत कर, मेरा दिल पहले ही बहुत दुखी है,
0: इसीलिए तो कहती हूँ प्रीत किए दुख होए।
3: दुख हो या सुख, मुझे अनंत से प्रेम है।
0: बस जब देखो अनंत अनंत अनंत, इसका कोई अंत भी है? जब उसे तेरी कोई चिंता नहीं तो तू उसके लिए क्यों इतनी व्याकुल रहती है? नहीं मानता तो सब्स्टिट्यूट कर दो।
3: कब तक नहीं मानेगा, मैं इंतजार कर सकती हूँ।
0: अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो?
3: ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने प्रेम पर भरोसा है। मैं अपनी पूजा भक्ति और लगन से उसे जीत लूंगी। अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है तो उसे एक दिन बदलना ही पड़ेगा।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहला प्रेम है ना, पर ज्यादा भरोसा मत करना।
3: तू नहीं जानती झरना, पहला प्रेम गले में बंधी उस घंटी की तरह होता है जो बस हर समय कानों में बजती ही रहती।
0: तुम घंटी बजाओ और वेटर को बुलाओ।
3: अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम कुछ लोगी?
0: कुछ नहीं, बस मुझे घर तक लिफ्ट दे देना।
3: अच्छा आओ चले।
4: नीरा जी।
0: कौन है?
4: वही आपका रोमियो।
0: ओ आप, क्या कहना चाहते हैं?
4: कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर यह कमबख्त दिल कुछ धड़कता सा है। सच तो यह है कि जब आपसे बातें करता हूँ तो सब कुछ फूल सा जाता हूँ और कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ।
0: मिस्टर रूप, मालूम होता है आजकल आप बहुत फिल्में देखने लगे हैं।
4: करेक्ट, पर यह मेरे दिल की फिल्म है जिसे सिर्फ आप ही अपने मन की आंखों से देख सकती हैं। आप ही मेरे सपनों को साकार कर सकती हैं। क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं है?
0: मित्रता का अर्थ प्रेम नहीं होता मिस्टर रूप, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं कुछ हद तक आपको पसंद भी करती हूँ, पर प्रेम नहीं।
4: पसंद और प्रेम दोनों में थोड़ा ही फासला होता है। पसंद का दूसरा नाम ही कशिश है, और जहाँ कशिश है वहीं मोहब्बत है।
0: ये आपका फलसफा हो सकता है
4: मगर सच
0: नहीं, एकदम गलत। मुझे आपसे प्रेम नहीं है।
4: कल शाम मिलोगी? नहीं,
0: मेरा डांस का प्रोग्राम है। सॉरी, अब आप जा सकते हैं।
4: हाय, किस बुत की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए।

0: बधाई देने आया हूँ।
1: किस बात की?
0: नृत्य की सफलता पर।
1: ओह, धन्यवाद।
0: सुनी, ये कुछ फूल आपके लिए लाया था।
1: ओ, मुझे देर हो रही है, चलो झरना। कुछ भी हो, रूप है दिलचस्प आदमी। तुझे बहुत पसंद है तो तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? अगर वो मुझे इतना चाहता जितना तुम्हें चाहता है तो जरूर कर लेती। क्या कमी है उसमें? हर बात में A1 है। A1 हो या टॉप ग्रेड, मुझे तनिक पसंद नहीं। मुझे तो उससे नफरत है।
2: चलो नफरत ही सही, कुछ तो है तुम्हारे दिल में उसके लिए।
1: बेचारा कितने अरमान रखता है। देख झरना, अगर तुझे रूप की तारीफ करनी है ना तो पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ, अनंत के घर बाद में जाऊंगी।
2: अच्छा भी, चुप हो गई। पानी में रह के मगर मैं से बैर कौन करे?
1: मैं मगर हूँ।
2: यू सिली गर्ल।
1: लो वो आ गया तुम्हारे चेहरे का बंगला। रामू
3: जी,
1: अनंत बाबू हैं?
3: जी नहीं, और वो तो पिक्चर देखने गए।
1: अकेले?
3: जी नहीं, साथ में एक थी।
1: थी? नाम?
3: नाम तो मालूम नहीं, पर
1: ठीक है। आनंद जी आए तो कहना मैं आई थी।
3: जी अच्छा।
1: ओह झरना, अब तुम गाड़ी ड्राइव करो, मेरा तो मूड एकदम ऑफ हो गया है।
2: और कहीं गाड़ी का मूड ऑफ हो गया तो?
1: फिर मजाक।
2: वो तो मेरी आदत है। सच, तुम तो जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो। अनंत से फोन करके पूछ लेना क्या बात है, हो सकता है नौकर को सही बात ना मालूम हो।
1: प्लीज झरना ड्राइव कर, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। अनंत, ये तुमने क्या किया? मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरा प्रेम क्षण भर में ठुकरा दिया। तुम नहीं जानते अनंत, नारी जीवन में सिर्फ एक पुरुष को ही प्रेम करती है, उसी को अपना इष्ट, अपना देवता मानती है। मैंने संपूर्ण निष्ठा से तुम्हें चाहा, तो समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे क्यों रूठ गए, क्यों रूठ गए। शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मैं तुम्हें नहीं पा सकी। पाना या न पाना तो भाग्य की बात है, पर तुम्हें बुला देना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं।

0: हेलो नीरजा,
1: तुम यहाँ भी?
0: यहाँ तुम वहाँ हम?
1: मेरा ख्याल छोड़ दो,
0: मैं तो

0: नीरजा।
1: हेलो।
0: तुम अभी घर आई थी?
1: हाँ।
0: कोई खास बात?
1: वही तो मुझे पूछनी है।
0: कौन सी बात?
1: वही जो तुम बताना नहीं चाहते।
0: ऐसी तो कोई बात नहीं।
1: पिक्चर किसके साथ गई थी?
0: तो ये बात है।
1: कौन है वो लड़की?
0: मेरी मंगेतर।
1: तो मैं क्या थी अब तक?
0: एक मित्र।
1: तुमने मुझे धोखा दिया।
0: गलत।
1: तुम विश्वासघाती हो।
0: ये तुम्हारा भ्रम है।
1: सत्य को भ्रम कहते हो?
0: नहीं, भ्रम है तुम्हारा। मैं पहले भी तुम्हारा एक मित्र था और आज भी एक मित्र हूं।
1: ठीक है, ठीक है, पर तुमने मुझसे पूछा तक नहीं मुझे अंधेरे में क्यों रखा?
0: तुम कल्पना के पंखों पर उड़ती रही तो मैं क्या करता? मैंने कई बार तुम्हारी उपेक्षा भी की पर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। इसमें मेरा क्या दोष है?
1: तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया। आखिर मुझमें क्या कमी थी जो तुमने मुझे से शादी नहीं की?
0: जानना चाहती हो?
1: हाँ।
0: तुम अति आधुनिक और स्वच्छंद हो। पति को सिर्फ तुम एक बैनर समझती हो। मुझे घर से प्यार करने वाली पत्नी चाहिए नीरजा, फैशन की गुड़िया या मॉडल नहीं।
1: गलत है आनंद, गलत है। आई एम होम लविंग।
0: फिर तुम्हारा रूप से भी प्रेम है। राकेश के साथ भी मैंने तुम्हें कई बार घूमते देखा है।
1: वो तो सिर्फ मेरा एक मित्र है और कुछ भी नहीं।
0: मित्र है तो तुम्हारे चक्कर क्यों काटता है? तुम भी तो बहुत घुलमिल कर बातें करती हो उससे।
1: तुम्हें भ्रम है आनंद, भ्रम है। अगर मैंने किसी को चाहा है तो सिर्फ तुम्हें।
0: ये तुम्हारा ढोंग है।
1: शायद दुनिया से सच्चाई उठ गई है, वरना तुम कभी ऐसा नहीं कहते।

0: दुख का राग अलापने से सुख नहीं मिलता नीरजा। जीवन की राहें बहुत लंबी हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम किसी अच्छे युवक से विवाह कर लो और मुझे भूल जाओ सदा के।
1: ये तुम कह रहे हो आनंद, तुम कह रहे हो। ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी।
2: सुनो तो नीरजा, नीरजा।

0: ओ नीरजा, आप और मेरे यहाँ, यकीन नहीं होता, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा?
1: जी नहीं, ये हकीकत है। तुम मुझे बहुत चाहते हो ना रूप।
0: जी
1: मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उपेक्षा की, अपमान किया।
0: लेकिन
1: काश मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें कभी तुम्हारा दिल ना दुखाती।
0: कुछ मेरी बात भी तो सुनिए।
1: मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। उस दिन कॉलेज के सालाना जलसे में तुम मुझे फूल देने आए थे और मैं ठुकरा कर चली गई थी। मुझे माफ कर दो रूप।
0: बस करो नीरजा, तुम कहना क्या चाहती हो?
1: मुझे तुमसे हमदर्दी है।
0: बस
1: मैं तुमसे प्रेम करती हूँ।
0: बस
1: मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
0: काश ये इरादा तुमने पहले कर लिया होता, अब बहुत देर हो चुकी है।
1: क्या?
0: और मैं एक दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी मिस नीरजा। अरे सुनिए सुनिए, तो मेरी शादी का कार्ड तो लेती जाइए।

हम सुन रहे थे ये गीत यंगिस्तान फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज में। कौशर मुनीर ने इसे लिखा और जीत गांगुली ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: हम सुन रहे थे पीके फिल्म का यह गीत। शान और श्रेया घोषाल ने इसे गाया, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा और शांतनु मोइत्रा ने इसे संगीतबद्ध किया। सुनते हैं ये संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक, और चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत, जो कि है फिल्म रेफ्यूजी से सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर।

हम सुन रहे थे यू मी और हम फिल्म का यह गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। मुन्ना धीमान ने इसे लिखा और विशाल भारद्वाज ने इसे संगीतबद्ध किया है। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम चित्रलोक का यह अंतिम गीत।

0: स्वदेश फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। विविध भारती का ये नागपुर केंद्र है। हेलो डॉक्टर, इस फोन इन कार्यक्रम संबंधी ये जानकारी, कल शुक्रवार दिनांक 12 जून 2026 को सुबह 10 बजे आकाशवाणी नागपुर केंद्र और विविध भारती नागपुर से एक ही समय प्रसारित होने वाले हेलो डॉक्टर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा मधुमेह यानी कि डायबिटीज। आपके सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर सुनील गुप्ता। श्रोता हमें सीधे सवाल पूछ सकते हैं इन फोन नंबर्स पर। ये नंबर्स है 6940067256001 और 2529266। तो सुनना ना भूलिएगा और फोन करके इसमें शामिल भी होइएगा। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर कल 12 जून 2026 को सुबह 10 बजे आकाशवाणी नागपुर केंद्र और विविध भारती से एक ही समय पर। विविध भारती का ये नागपुर केंद्र है। रात्रि के 8:42 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं मराठी में मुख्य समाचार।
1: आकाशवाणी नागपुर, स्वाति सोनपेटकर आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने

0: बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
9: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
8: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
10: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है। कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
8: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
1: ये आकाशवाणी है फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा एक रिपोर्ट
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील इटली जर्मनी स्पेन अर्जेंटीना इंग्लैंड फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा पहले मुकाबले में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपके लिए में आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ जिसे लिया गया है गजल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज है साहिल लुधियानवी के हैं बोल मदन मोहन का है संगीत
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है
4: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से यह गीत। जगजीत सिंह की आवाज में कैफी आजमी के बोल और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया, एक नगमा आपके नाम किया। चलिए चलते हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में अगले नगमे की ओर, जो कि है बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर, तलत अजीज की आवाजें हैं, मखदूम मोहिद्दीन के बोल हैं और खयाम का संगीत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से तलत अजीज की आवाज में शहरयार के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस गजल को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गजल। मासूम फिल्म से है और अनूप घोषाल की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और आर डी वर्मन का है संगीत।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साज की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने, मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद, ही इज ऑल्सो प्रीबिक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौड़ एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौर को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौर की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस, एक गौला टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई

उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी रादर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए, और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी, और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, ज़िद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे, और एक घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रुकुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमीम अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तिरखवा खां साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को

देख देख के सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला। उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में,
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: विविध भारती छाए गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

पेशी खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत के तराने रात गुनगुनाती है और दिल में उम्मीदों के चिराग मुसलसल जलते हैं। दुनिया के नज़ारे, ये चांद ये सितारे, उसे एक नज़र में समाए लगते हैं, जिनके बगैर सब कुछ बेजार सा लगता है। जब वो आ जाएं तो मौसम बहार आ जाए, कलियों में शोखी, फूलों पे निखार आ जाए।

वो शाम का ढलना, वो रात का इंतजार, गुनगुनाते नजारों में जुगनुओं की कतारें, चांद की मध्यम चांदनी में वो इजहार मोहब्बत, वो शोखी वो कयामत, बातों ही बातों में क्या बात हो गई, पलकें क्या झुकी, किस्से हर रात हो गई।

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के बाकी नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो, सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

यहाँ भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरी नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भला किस तरह छुपाएं। साज़ दिल पे एक तराना दिल ने छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल ने छेड़ा है।

मचलती घटाओं की गुलाबी रंगत, प्यारे वो पल जब बादे सबा ने कुछ कहा। दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती हैं, कुछ तूफान दिल में मचलते हैं। ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना, तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो, कुछ दिल की कहो, कुछ कुछ दिल में ही रहने दो।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

0: सुनिए
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती

0: से पत घर का जमाना परदेसियों से ना।
1: मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, देश की सुरीली धड़कन। ध्वनि तरंगों के ताल पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र FM 100.6 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेगा दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार, समाचारों की प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया।

0: मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोची जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस दो दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, देश की सुरीली धड़कन। ध्वनि तरंगों के ताल पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का नागपुर केंद्र FM 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 और 25 सेकंड हो गए। आपकी नजर चंद बेला के फूल।

कार्यक्रम का यह पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में, इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, सचिन देव बर्मन का संगीत, ये गुलिस्ता हमारा इस फिल्म के लिए।

श्रोताओं, आपके रेडियो सेट्स पर इस समय गूंज रही है तर्ज राहुल देव बर्मन की। मजरू सुल्तानपुरी के बोल किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें बड़े दिल वाला फिल्म के लिए।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत है, आनंद बख्शी का रचा हुआ, लक्ष्मीकांत पेरेलाल की तर्ज, आपके रेडियो सेट्स पर आवाज किशोर कुमार की।

पारसमणी फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। शब्दकार थे असद भोपाली और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बेला के फूल, इस कार्यक्रम का अब समापन का वक्त आया है। अब तक तो आप सबने हमारे साथ दिया है, लेकिन प्यार के मोड़ पर आप भी हमारे साथ होंगे, यही उम्मीद है।

निश्वालकर ने। दोस्तों, बेला के फुल कार्यक्रम में आज आपने सुनी ये गुलिस्ता हमारा, बड़े दिलवाला, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मेरे जीवन साथी, पारस मणि और परिंदा फिल्मों के नगमे। उम्मीद है आज का ये संस्करण आपको पसंद आया होगा। और अब दीजिए इजाजत कार्यक्रम समाप्त करने की।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको अवगत करा दें मौसम संबंधी जानकारी से। बीते 24 घंटों में नागपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, जो औसत से 4.3 डिग्री ज्यादा था। न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस, जो औसत से 1.9 डिग्री कम था। आने वाले 24 घंटों में नागपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में आसमान अंशतः बादलों से घिरा रहेगा। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। ये था मौसम का हाल। FM बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागपुर से हे विविध भारती केंद्र है। रात्रीचे 11:30 आणि 35 सेकंद झालेले आहेत। आमच्या केंद्राचे आजचे कार्यक्रम संपलेत। पुन्हा आपले भेट होईल उद्या सकाळी 5:55। शुभरात्री, जय हिंद।